0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: तरीके आ रहे मार्केट में, तरीके तरह तरह के तरीके, कौन से वाले बताते बताते हैं, रुक जाओ थम जाओ थोड़ा।
2: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: रेडियो मस्ती 24/7 पर, जी हाँ, हम और आप मिल रहे हैं इस शो पर। इसका नाम है मस्ती मैडनेस। इतने शोज कर लिए कि हम ना हम शो का नाम ही भूल जाते हैं। यही तो शो है जहाँ पर इधर उधर की सारी बातें हम कर सकते हैं द वे वी वॉन्ट, राइट अंतरा? तो क्या खबर है तुम्हारे पास?
1: खबर कुछ ऐसी है कि पता नहीं ये वाले मार्केट में क्या ही चल रहा है, बट देन वेल लेट अस वेलकम दिस वुमन। या एंड इनके लव अफेयर वाले जो भाई साहब है, शादीशुदा है हमारी ये बहन, ठीक है, बट इनके लवर है, ठीक है। ये एक नर्स रह चुकी है नर्स अभी तक, आई एम श्योर अब नहीं रही हैं, बट वेल क्या किया भाई, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट की एक खबर है। इन्होंने और अपने लवर के साथ प्लान किया कि पति को हटा देना है बीच में रास्ते से।
3: अच्छा
1: जी जी, तो पहले अटेम्प्ट में इनको, इनके पति को दोनों ने मिलकर प्लान किया, छज्जे से धक्का मार के कुछ तो करेंगे। छज्जे से धक्का मारा, चोट लगी, बट सर फिर भी ही वाज अलाइव, बच गए। तो मतलब हॉस्पिटल से करके जब घर आए तो घर में भी शी वाज सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम कि भाई अब उसको हील करना है, रिकवर करना है ऐसे, बट क्योंकि प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेज, बिकॉज शी वाज अ नर्स, यू नो व्हाट शी डिड, शी एक्चुअली उसका आईवी वो होता है ना इंजेक्शन इंटरवेनस वाला, हार्पिक, आईवी दे दिया,
3: हार्पिक का आईवी दे दिया। ओ माय गॉड, ये कहां से आते हैं इन लोगों के पास इतने ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज, वाओ।
1: अभी तो मतलब ऑब्वियसली जेल में है दोनों के दोनों, द लवर एंड द दिस वुमन, या बट देन Where are they getting these ideas from?
3: Well, आजकल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन न्यूज मीडिया को ऑन करो तो एक ने दूसरे को धक्का दे दिया, दूसरे ने तीसरे को धक्का दे दिया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने कुछ। यार ये why can't they just say हमको डिवोर्स चाहिए या हमको शादी नहीं करनी, इट्स एज सिंपल एज दैट। हार्पिक आईवी नॉट बैड, विथ गेट्स बेटर।

0: They were not chosen. They were created.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव. अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट. दे आर फ्रेश. They are...

0: गए।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
2: And on Radio Masti 24/7, जहाँ पर गाने चल रहे हैं बढ़िया, इस शो का नाम है फ्राइडे सुबह वाला मस्ती मैडनेस। अगर आप इसको सुन रहे हैं ऑन कोर, तो कब है ये अंतरा, क्या चल रहा है, कितने बजे का?
3: फिर तो ये है सैटरडे शाम वाला मस्ती मैडनेस।
2: वाह,
4: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती।
3: टोटली क्रेजी हम दोनों एंड ऑल आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली खबरें लेकर हम दोनों। और अब है हमारी रेनुका की बारी।
2: नहीं, आई कैन नॉट डू द मेरे से नहीं होता, बाद में सिखाना हाँ मेरे को। अब ऐसा है कि यहाँ पर इंडोनेशिया चलेंगे इस टाइम पर, ठीक है। इंडोनेशिया के एक नेबरहुड में ग्लोबल अटेंशन मिली है उनको। क्यों मिली है? क्योंकि बार बार चोरियां हो रही थी, ठीक है, उस नेबरहुड में बार बार चोरियां हो रही थी। अब लोग इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने ना एक तरीका निकाला कि इस बार तो ना पकड़ ही लेंगे, धर लेंगे, ठीक है। और जैसे ये चार सस्पेक्टेड थीव्स वहां पर पहुंचे, कुछ करने ही वाले थे, तो उन्होंने उनको धर्द पोचा जिसे कहते हैं, ठीक है। अब वो करने के बाद में अब इनका क्या करें, क्योंकि भाई अब नाउ दे वांटेड टू सेट एन एग्जांपल कि भाई याद रखेगी दुनिया दैट टाइप्स। सो उन्होंने डक टेप लिया, वो ब्राउन कलर का होता नहीं है जब हम दुनिया
3: इधर-उधर देश,
2: हाँ, इलेक्ट्रिकल या फिर वो जो टेप हम लगेज एंड ये सब कार्टन्स को बंद करते हैं, या कार्टन्स को जब करते हैं जब हम शिफ्टिंग करते हैं घरों की एंड ऑल दैट, यू नो उसकी आवाज आती है, चीजी करके आवाज भी आती है उसकी, खींचते हो तुम। उन्होंने पूरी बॉडीज इनकी डक टेप में बंद कर दी, ओके, पूरी बॉडी, सिर्फ आंखें और नाक की जगह छोड़ दी कि हाँ देख लो और अपना सांस ले लो, उसके अलावा मुंह बंद, पूरी बॉडी, हाथ भी अंदर करके, जस्ट यू कैन सी इट ऑन आवर सोशल मीडिया एक्चुअली। एंड देन इन्होंने सडनली आइडिया आया इनको कि यार चलो उनको टेलीटबीज बना देते हैं, तो टिंकी विंकी डिप्सी लाला पो वैसे करके उनके कान भी बना दिए डक टेप से, ओके। एंड देन उनको साइड में बिठाया चारों को, एंड दे कांट इवन सिट प्रॉपरली बिकॉज इमेजिन योर बॉडी सो स्टिफ बिकॉज द डक टेप इज लाइक ऑल ओवर, राइट। एंड देन पुलिस आ रही है उनका इंतजार करते हुए, बट टिल देन ये सारे कॉस्ट्यूम्ड सस्पेक्ट्स वर केप्ट देयर, सो इट्स एब्सोल्युटली फनी द वे इट इज। या
3: मम्मी बना दी डक टेप से एकदम लपेट लपेट के, ओ माय गॉड। एंड आई कैन ओनली इमेजिन, ओके, क्योंकि टेलीटबीज वाला आइडिया ना किसी को पहले नहीं आया होगा, तो डक टेप लगाने के बाद किसी के क्रिएटिव दिमाग में आ गए, इसको एक लेवल अप और लेकर जाते हैं, ओके ऐसा कर देते हैं।
2: बिल्कुल, पुलिस तो आई नहीं है, जब तक पुलिस नहीं आती तब तक थोड़े क्रिएटिव, बोलो कान बना लो उनके। हमारे सोशल मीडिया पर जाके जरूर देखना आप, दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो नेक्स्ट टाइम वायलेंस वायलेंस मत करो, बस डक्ट टेप लगा के बिठा दो उनको साइड पे।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
6: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
5: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
7: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
8: जीजी
7: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
8: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: जहां पर एक तरफ इंडोनेशिया के चोरों के साथ ऐसा डक टेप वाला हादसा हुआ, एक और ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं हम मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस।
2: मस्ती मैडनेस एंड गैस्ट्रोनॉमिक खबरों के लिए यहां पर अब सही जगह पहुंचे हैं। दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 एंड ऑफ कोर्स फ्राइडे मॉर्निंग विद रेणुका एंड अंतरा।
1: बेअंतहा इनोवेशन चल रही है इस मार्केट में भी, क्योंकि जहां पर इंडोनेशिया में वहां पे इन्होंने डक टेप का यूज किया एंड उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। अब चलते हैं आपको लेकर ब्राजील।
2: जी,
1: ये भाई साहब ने और भी कुछ ऐसा नायाब किया। तो भाई बड़े चोर, ठीक है, बड़ी चोरियां मोहल्ले में, और क्या था, इनके घर में फेंस था, फेंस को टाप टाप के जो है यहाँ से एक डॉक्टर साहब के घर से बहुत चोरियां हो रही थी। बहुत ही ज्यादा परेशान होकर फिर अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेप कर दिए 12 दर्जन HIV इन्फेक्टेड सीरिंज अपने मेटल फेंस के ऊपर, और वार्निंग साइन ने लिख दिया जिसमें लिखा था कि वॉल विद HIV पॉजिटिव ब्लड, नो ट्रेसपासिंग, एंटर एट योर ओन रिस्क।
2: ये किस तरह के क्रिएटिव आइडियाज हैं, वेरी नाइस।
1: आई हैव लाइक वही मतलब आइडिया तो आइडिया, डॉक्टर साहब ने अपना मतलब वो वाला डॉक्टरी वाला दिमाग लगाया कि कुछ न, अच्छा ये भी है, इट्स वेरी साइकोलॉजिकल एज वेल, यू नॉट श्योर कि वेदर इट इज एक्चुअली इन्फेक्टेड और नॉट, बट इफ समबडी टेल्स यू, would you go for it?
2: Now, well, the thing is that exactly. So many years ago, do you remember Delhi में सुनने में आती थी ऐसी बातें कि लोग सुई चुभा देते हैं बसेस में, या you know जब आप भरी भरी किसी जगह पे जाते हो और फिर HIV हो जाता है लोगों को, you know they are just moving around with those needles. So I had a couple who had visited me in Singapore, right? And वो क्या हुआ कि जो यहाँ पर किसी के जूड़े का पिन हमारे जू की ट्रेन में रह गया होगा, एंड दिस लेडी माय फ्रेंड जस्ट सैट उस पे और उसके हाथ पे लग गया, जिसकी वजह से उसका हल्का सा ब्लड आने लगा, ओके, किसी का निकल गया होगा। सो देन शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी केम फ्रॉम दिल्ली टू विजिट मी, शी स्टार्टेड क्राइंग कि अब तो मैं मर जाऊंगी, मुझे HIV पॉजिटिव हो गया। आई सेड तू सिंगापुर में है बहन, तू व्हाट इज रॉन्ग विद यू, बट शी हाउल्ड, शी इवन सेड कि मेरे बच्चे तू देख लेना अगर मुझे कुछ हो गया, दिस एंड दैट्स आई स्टिल लाफ अबाउट इट because many years later I pick up the phone and say bachche kahan hai tumhare, wo to mere ho gaye the na aur tum abhi tak zinda ho
1: poor thing man, I can completely imagine what she would have like, uska trauma itna gehra hota hai in sari cheezon ka, it's more psychological like I was saying, really? Oh my god,

0: वक्त बदल रहा है और ये वाली खबर को आप बिल्कुल काफी ध्यान से सुने। वेल, वक्त बदल रहा है और उसके साथ साथ में ऑफिसर्स में काम करने वाली नई जनरेशन आ रही है और उस जनरेशन का नाम है जेन जी, जो काम कर रही है जेन एक्स के साथ। मुबारक हो।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस।
2: भाई जिस हिसाब से इस कॉम्बिनेशन पे मीम्स जो है बन रहे हैं एंड they are hilarious and so very relatable at the same time.
0: Absolutely. So well, अब हाल ही में हुआ कुछ ऐसा कि एक Gen Z का जो employee है Gen Z, वो अपने manager के साथ में उसकी लग गई. So basically हुआ कुछ ये कि ये जो employee है Gen Z, उसने inform किया अपने manager को कि भाई fever बढ़ गया है, तो sir नहीं आ पाऊँगा. तो
2: okay,
0: manager ने जवाब दिया कि चलिए आपको doctor के पास ले चलते हैं. तो एम्प्लॉई ने जवाब दिया, नीड लगेगा तो बताऊंगा सर, अभी के लिए पैरासिटामोल. तो भाई थोड़ी देर के बाद मैनेजर जो है उसने कहा, डायरेक्टर सर ने कहा है कि जो बीमार हो उससे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लो, इसका मतलब है कि भैया हम नहीं मानते तुमको. तो उस जेन जी एम्प्लॉई ने फटाक से जवाब दिया, वो भी सारा टेक्स्ट पे, मैं स्कूल स्टूडेंट नहीं हूं सर, लीव रहती है, लीव ली मैंने, खुद डॉक्टर है वो, उनको बोलो मेरे नाम की प्रिस्क्रिप्शन बना ले, नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन और लीव एप्लीकेशन विद पेरेंट सिग्नेचर नहीं है मेरे पास और मैं अभी रेस्ट कर रहा हूं, मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं करूंगा. लव इट.
2: ये तो बहुत ही सैवेज था.
0: टोटली मतलब स्क्रीनशॉट सारी दुनिया में घूम रहे हैं. मतलब तुम क्या स्कूल के बच्चों की तरह क्यों, मतलब हम कोई स्लेव्स हैं या हम एम्प्लॉइज हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, राइट? तो आप क्या ख्याल है?
2: That is why they are Gen Z, okay? Because so they do the same thing. A millennial would have reacted very differently, okay?
0: Exactly.
2: The Gen Zs are like this. भाई क्या भाई, अब हम आ चुके हैं बाहर, स्कूल से आ चुके हैं. मैं वही पे मिलेनियल भाई, उसका बस चलता तो शायद वापस ऑफिस आ ही जाता कि मुझे क्या इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, मैं आ ही जाता हूँ.
0: But it has been for generations. ये बात चलती चली आ रही है कि भाई जब बंदे को सिर्फ थोड़ी सी, वो कहते ना हरारत, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ी बॉडी पेन हो रही है, तो वो दो पैरासिटामोल लेके घर में आराम करेगा रादर देन उठ के जाएगा MC लेने के लिए. और फिर लेकिन कंपनीज कहती है हम कैसे माने. तो अभी तक फॉर generations ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है. वैसे एक बात तो है.
3: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
4: Check it out.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कैसे कैसा बनना चाहते हो अगर आप एक दिन 96 ईयर ओल्ड हो जाते हो, कैसा बनना चाहते हो?
1: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है गैस।
2: आई लव द वे शी सेज एक दिन 96 ईयर्स ओल्ड हो जाते हो। हेलो, उससे पहले 1991, 1992, 1993 भी तो हो गए ना, हमें नहीं होना इतना। गुड मॉर्निंग मस्ती मैडनेस पर, जी नहीं, इतनी भी दीर्घायु की कामना ना करते हुए रेणुका यहाँ पर। लेकिन हाँ, क्या हुआ 96 में बताओ।
0: भाई, ये जो ग्रैंडमा है हु इज 96 ईयर ओल्ड, ग्रैंडमा ड्रोनियाक के नाम से ये जानी जाती है, एंड शी इज अ टिकटॉक स्टार बाय द वे एट 96।
2: है, ओके, शी मस्ट बी द ओनली वन एट 96 ऑन टिकटॉक।
0: Yeah, she has got 15 million followers.
2: यार ठीक है, वो थोड़े दिन की बात है, फिर तो वो बंटी जाएंगे।
0: What is this थोड़े दिन की बात है ना? So well, anyways, तो भाई ये जो हमारी ग्रैंडमा है, इनकी एक दिक्कत आ गई है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा दैट ये जिस रिटायरमेंट कम्युनिटी में जहाँ पे रहती हैं, तो वहां से इनके पास आ गई है फॉर्मल वार्निंग, क्योंकि इन्होंने होस्ट की काफी सारी, ये होस्ट करती रहती हैं लेट नाइट गेट टुगेदर्स एंड सर्विंग अल्कोहल टू अदर रेसिडेंट्स। ओके, तो ये जो लेटर है, जो इनके पास वार्निंग लेटर आया, तो वो टिकटॉक पे अपना वीडियो बनाते हुए दिखा रही है दैट नॉइस कंप्लेंट्स एंड सिक्योरिटी फुटेज शोइंग विजिटर्स लीविंग इनका रूम रात के 1-1, 2-2 बजे, वार्निंग दैट कंटिन्यूड इंसिडेंट्स कुड पुट हर रेसिडेंसी एट रिस्क। बैक डाउन करने के बजाय हमारी ग्रैंडमा जो है, उन्होंने कैमरा पे पहाड़ी चिट्ठी सबसे पहले, और कहा $12,000 दे रही हूँ पर महीना यहाँ रहने के लिए, एंजॉय तो करके जाऊंगी चाहे कुछ भी होता हो।
2: एक्चुअली ऑन सेकेंड थॉट्स 96 के गोल तो मेरे कुछ ऐसे ही हैं। जो तो मैं बच गई, तो आई प्रॉमिस कि मैं भी मतलब मतलब मचा के जाऊंगी, बाय गॉड। हाँ, दुखी हो जाए, कंप्लेंट्स हो जाए, बहुत कुछ, और फिर कोई आए और बोले बुढ़िया रहने दो।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: भाई आजकल ऐसा है कि खबरें हमारे पास अपने आप ही आ रही हैं, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, वी हैव स्टार्टेड साउंडिंग लाइक वन ऑफ दोज केसरी बाजार टाइप की न्यूज़पेपर्स ऑन मस्ती मैडनेस, बिकॉज सच्ची एक से बढ़कर एक खबर आ रही है। अब ये वाली सुनो जरा,
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
4: This is musty. Most amazing fact is it never ends. It is never ending. It just pops up every single time we do this episode, any episode of Musty Madness.
2: ये देखो जरा, अब मैं आपको लेके जा रही हूँ ग्वालियर, ठीक है? Now you have to listen to this one. आप जिंदगी में जितने भी बिजी इंसान है, इस टाइम पर सब कुछ साइड पर रखो और ये वाला सुनो, alright? It's really funny. It's a marriage fraud case, okay? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नई

0: नई नवेली दुल्हन पता लगा उसके पति को कुछ टाइम के बाद कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है. वेल दैट्स नो बिग डील. लेकिन उससे भी बड़ी कहानी ऐसी है कि उसकी शादी पे जिस भाई ने उसका कन्यादान किया था ओके वो एक्चुअली उसका पति था. सो एग्जैक्टली. सो बेसिकली इस पति पत्नी ने मिलके प्लान बनाया था कि पत्नी की शादी करा देंगे कहीं पर, फिर वो उसके सारे पैसे पूसे लेके भाग जाएगी एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट. सो वो भाई बनकर आया था उसका जो एक्चुअली पति था, उसने कन्यादान किया था विच इज द फनीएस्ट थिंग ऑल राइट. एंड फ्यू डेज लेटर भाई इसने देखा कि ये न्यूली वेड मेरी जो बीवी है वो पूरे टाइम अपने फोन पे चैटिंग करती रहती है, व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना. तो 7 लाख तो शादी पे खर्च दिए और सेरेमनी पे एक माँ भी बन के कोई आई थी जो कि वहां पर यू नो साथ में ब्राइड की फैमिली से थी. ये भाई आया था बन के और फिर उसने पति ने खैर थोड़े दिन के बाद उसका देखा चैट्स तो पता लगा अरे ये तो अपने हस्बैंड से बातें कर रही है. एंड दे यूज टू मीट छुप छुप के और जो घर के सारे पैसे हैं वो भी धीरे धीरे जा रहे थे बाहर. सो इट गेट्स बेटर आई टेल यू.
1: क्या क्या हो रहा है भाई, क्या क्या हो रहा है, मतलब कोई कोई सीधी बात करने को तैयार ही नहीं है.
0: हम है ना
1: सब इधर उधर घुमा घुमा के, मतलब पति कुछ बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है, सब कुछ ना कुछ बने ही जा रहे हैं.
0: हम है ना, हमारा भी तो बना रहे हैं सब यहाँ पर बैठे हुए. हम सीधी बात करते हैं हमेशा, तो देख लो कुछ फायदा नहीं इस दुनिया में, कोई फायदा नहीं, सब टेढ़ी बातें करनी चाहिए. सीरियसली
1: सही में सही.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: कि मैं कैसे बताऊंगी, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो घिन पहले आ रही है, बता, चलो बताना तो पड़ेगा ही।
3: घिन आ रही है, आई हैव नॉट हर्ड दैट वर्ड फॉर सो लॉन्ग।
4: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
3: घिन आ रही है, पता है बचपन में ये गिन और घिन में मेरे को बहुत कंफ्यूजन होती थी। बट लेट्स मूव ऑन। बताओ बताओ।
2: So, imagine करिए कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ दो स्लीपर क्लास की ट्रेन जहां पे कभी कभी खिड़कियां और खिड़कियों में रॉड होते नहीं है। स्लीपर क्लास वाले डब्बे बिल्कुल ही, जो बिल्कुल जस्ट जी रहे हैं वो किसी दम पे, एंड उसमें ना ठूस ठूस के लोग भरे हुए होते हैं, ठीक है। सो अब आप लेटे हुए, ठीक है, नीचे वाली बर्थ पे, और आपके सर के ऊपर वो बड़ी सी खिड़की है विदाउट एनी जो है
3: वेंटिलेशन,
2: जो लोहे के,
3: हाँ करेक्ट,
2: पूरा है, मतलब फुल हवा आ रही है एंड सब कुछ, सर एवरीथिंग इज ओके। तो ये बंदा जो है उठ के जाता है, सुबह एक आंटी लेटी हुई है और ये बंदा उठ के जाता है। भाई बिकॉज व्हाटएवर रीजन इट वाज, भाई को लगता है कि यार मेरे को हल्का होना है, तो मैं काम करता हूँ, मैं सीधा इस खिड़की से ही हल्का हो लेता
3: हूँ। ओह नो, प्लीज नो। ओके,
2: सो भाई करते हैं, तो फॉर सम वेरी, बहुत ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा होगा कि उड़ उड़ के छींटे जो है वो आंटी के शक्ल पे नहीं आए। बट जो क्या होता है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा साइंस फिजिक्स यहाँ पे काम करती है, क्योंकि ट्रेजेक्टरी जो है ना वो पहले बहुत एंगल में दूर जाती है, लेकिन वो फिर वो पास आने लगती है, बिकॉज आपका प्रेशर कम हो जाता है।
3: करेक्ट, वो तो है।
2: ये सारी चीजें साइंस होते होते फिर वो आपके हाथ पे भी थोड़ा, भाई उसने अपना जिप अप किया, हाथ ऐसे करके झटका जैसे होता है ना करके,
3: okay.
2: और तब जाके वो कुछ छींटे जो है वो आंटे
3: उसके बाद। I'm not going to. Why did you have to explain so much? मतलब, okay. So,
2: तो yeah. मजा तो explanation में था, क्योंकि जब आप visually आप उसको सोचो, तो मतलब घिन, I घिन.
3: Okay. So, अगर आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं और आप पे छींटे आए, तो आप समझिए कि ऊपर वाले ने बरसात करी है, कुछ अलग तरह का नमकीन पानी बरसा है आप पे। My God, we are talking absolutely atrocious stuff right now. Radio Musty 24/7 taking a short musical break यहाँ पर।
5: Oh, yeah.

0: They were not chosen. They were created.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
3: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. What? Brought to you by Home Screen Entertainment.
4: Some stories are easy to tell. पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: भाई आज मेरी किस्मत में सारी की सारी ऐसी खबरें हैं जो कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस्ड हैं, बट दिस वन इज येट अगेन अनदर इंटरेस्टिंग वन जो मेरे को समझ नहीं आ रहा पहली वाली इंटरेस्टिंग थी या ये वाली।
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: ये तो हम सुनने के बाद बताएंगे, बताओ बताओ।
0: ओहो
2: एम्प्लॉई लेके आए हैं,
0: ये देखो जज बने बैठे हैं। But yeah, seriously, I tell you the limit to which employers can go nowadays. So what had happened was कि सच की खबर ये कि कुछ दिन पहले एक एक आदमी ने resign किया अपनी नौकरी से because of the simple reason that he was not sure कि उसका boss कह क्या रहा है। So इसने बताया था अपनी कंपनी में कि भाई उसकी शादी होने वाली है एंड ऑल दैट स्टफ, ऑलराइट। और फिर जब समय आया तो इसने छुट्टी के लिए अप्लाई किया एंड देन ही गॉट द सरप्राइजिंग लेटर फ्रॉम द सीईओ सेइंग सॉरी बट योर छुट्टी इज नॉट अप्रूव्ड। एंड द गाय वाज व्हाट इट्स नॉट, मतलब क्या? तो इसको जवाब ये लिखा था कि भाई प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज क्रिटिकल फेज पर इस टाइम पर, सो सॉरी आपकी छुट्टी बिल्कुल भी मंजूर नहीं हो सकती है। तो इसने रिजाइन कर दिया। नाउ द बॉस इज लाइक यार ऐसी क्या बात हो गई, यू नो व्हाट इज इट। ऑफ कोर्स द बॉस हैड फॉरगॉटन and but the boss had suggested that whatever event you have to attend you can attend on Google Meet. Okay, so isne bola sorry but he just said sorry but this is my wedding we are talking about and I'm not going to attend it on Google Meet, thank you and therefore I resign. Now ye sari ki sari baat jab viral hone lagi to bhai pucha gaya ye kya hua, what is this going on. So boss bhool gaya tha कि शादी हो रही है, ठीक है चलो, इट टॉक्स अ लॉट अबाउट कंपनी कल्चर कि भाई किसी की शादी हो रही है एंड यू वर्किंग सो क्लोजली, इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है तो तुम उसकी याद रखो यार, लेकिन सजेस्टिंग कि भैया शादी गूगल मीट पे अटेंड कर ले, हम छुट्टी नहीं दे सकते, इज ऑल्सो चाहे तेरी है चाहे किसी और की, इट्स ऑलरेडी सो व्हाट डू यू थिंक अंतरा, तुम्हारी शादी गूगल मीट पर हो सकती है?
2: Well, I would have done the same choice बंदे ने, कि भाई तू resignation रख, मैंने नहीं काम करना तेरे पास, ऐसे मतलब ये क्या है, इतने इतनी बात भी नहीं आज रह पा रही है तो फिर मतलब ठीक है, ओके टाटा बाय बाय।
0: सीरियसली
2: ऊपर से तो उसको कह रहा है कि गूगल मीट पे अपना इवेंट अटेंड कर,
0: बताओ बताओ इतना क्लोज है यार कि अगर छुट्टी दे भी देता एक दिन शादी की, अगले दिन रिसेप्शन पे कहता आई सॉ यू वर नॉट वेरी एक्टिव ऑन टीम्स, क्या बात है कहाँ थे तुम।
3: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।

0: ऑलराइट, और इसी के साथ में टाइम फॉर मी टू गो आल्सो। आज तो उफ, मैं भी फ्राइडेस को जाने लग गई हूँ आजकल तो घर।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये
0: अंतरा। इसी के साथ में मुझसे सपना जी ने पूछा, कहाँ हो तुम फ्राइडे सुबह लास्ट टाइम? बोला कि आज कहाँ जा रही हो, बताओ ना कौन सी जगह छुट्टी पे जा रही हो, तभी तो तुमने शो का टाइम चेंज किया। मतलब देखो, शक की बिना पर मुझे कोई छोड़ नहीं रहा।
2: होता है, ऐसा ही होता है, बट देन इट्स क्वाइट फन, ओके। बट इसी के साथ साथ भाई, नॉट ओनली दैट, सपना जी ने इनको ऐसा बोला है तो आरती जी ने इनको अल्फा वुमन डिक्लेयर कर दिया है भाई, नॉमिनेट किया है इनको।
0: हाँ, आरती गर्ग, वेल यार, आई रियली लव हर बिकॉज वो हमेशा ना मेरी बड़ी पॉजिटिव साइड को देख के बहुत, मुझे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। सीरियसली, किसी की इतनी बढ़िया चॉइस कैसे हो सकती है? थैंक यू।
2: आई नो, totally. आपकी भी, आपकी जिंदगी के अल्फा वुमन की जो बढ़िया चॉइस है ना, आप वो हमें प्लीज बताइए, बिकॉज दैट कैन मेक यू विन ये अल्फा के टिकट। कैसे विन करेंगे उसका भी एक प्रोसीजर है, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप पहले देखिए कि आपके आसपास जो कोई ऐसी इंस्पिरेशनल फिगर जो इनको देख के आपको लगता हो कि भाई इन्होंने ये है अल्फा वुमन, लाइक इन ट्रू सेंस, सो आप उनको नॉमिनेट करें, बताएं क्यों आपको लगता है कि वो अल्फा वुमन है, एंड देन यू टेल अस, एंड उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वाह वाह, मुबारक हो, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा लिखा आपने, एंड आप जाइए अल्फा देख कर आइए, और एक अल्फा मूवी टिकट आपकी जो है वो हम करेंगे रीइंबर्स, लेकिन सिर्फ 10 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व।
0: बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो भाई, आपको सिर्फ यही करना है कि जाकर इस वीकेंड पर बिफोर संडे आपको जाके देख के आनी है अल्फा फिल्म, और फिर हमें भेज देनी है अपनी टिकट, क्योंकि हम आपको उसके पैसे वापस करेंगे। लेकिन उससे भी पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको बताना है कि आपकी जिंदगी में अल्फा वुमन कौन है। आप खुद भी हो सकते हो, यू डोंट नीड टू हैव समबडी एल्स, राइट? एंड जस्ट टेल अस व्हाई ऑन रेडियो मस्ती 24/7, टाइम फॉर अस टू से बाय बाय एंड एंजॉय द वीकेंड। ओए हो, जो कि शुरू हो रहा है, अब शुरू हो रहा है, अब
3: निकला गड्डी लेके।
0: चलो अंतरा, निकलते हैं गड्डी लेके।
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: रास्ते पे जो भी है, एक मोड़ आएगा और मैं मसाज पार्लर के अंदर जाऊंगा। ओके,
4: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: They were not chosen. They were created.
2: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
1: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
1: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया'स फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल, वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
4: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
1: बॉर्न टू फाइट, बिल्ट टू सर्वाइव। अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस।
3: अरे अरे, अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार, मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh mein raho.
4: Ye raat to apni hai, par ek khayal kiska hai?
5: Tumko lekar.
4: Ye raat hume itna pyar kyu karti hai?
5: Mujhe chand pehle chalo.
4: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

धड़कन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस नई सीरीज में जिसका नाम है लेजेंड्स द अचीवर्स सीरीज, और जहां पर मैं उन शख्सियतों का जिक्र करता हूं जिन्होंने समय की रेत पर अपने पांव के निशान छोड़ दिए हैं और जिन्हें जमाना याद करता है। चलिए मैं आपको एक वर्ड स्पेल करता हूं, आप

अगर मजबूत देते तो फिर लूटते कैसे वो लोग? मजाक कर रहा हूं, मगर आप मेरी इस बात से जरूर समझ गए होंगे कि गोदरेज क्या है। गोदरेज पूरा का पूरा घर है, घर के सामान है। मसलन अभी 2-3 साल पहले हमारा 30 साल पुराना फ्रिज खराब हो गया, और ये हमारा पहला फ्रिज था और ये गोदरेज का था। माँ ने तो खूब आंसू बहाए, उनकी शादी का गिफ्ट था ये। और हमारे एक नोन ने तो उसे बेचा नहीं बल्कि अलमारी बना लिया, उसमें अपने छोटे मोटे सामान रखने लग गए वो। लेकिन उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया, वो घर का ही मेंबर था। अच्छा, कहीं बाहर जाते तो पूरे घर को पीतल के बड़े ताले से बंद करके जाते। वो ताला भी होता था गोदरेज का। और तो और, गोदरेज की सेफ में मम्मी के गहने, गोदरेज की सेफ बोले तो गोदरेज की अलमारी, घर के कागज होते थे, पापा के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे जाते थे, कपड़ों के लिए जो अलमारी होती थी उसे भी गोदरेज की अलमारी कहते थे। हालत तो ये होती थी कि लोग कहते थे कि कपड़े गोदरेज में रख दो, अलमारी तो साइलेंट होता था, ये अंडरस्टूड होता था। सच कहूं तो गोदरेज यानी घर यानी नॉस्टैल्जिया। तो आज हम इसी नॉस्टैल्जिया को जिएंगे, इसकी सौगात देने वाली कंपनी की बात करेंगे। कंपनी

0: They were not chosen.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
3: Alpha program uska junoon hai, aur jo bhi uske raaste mein aata hai, wo use maar deta hai.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
4: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
5: कहानियां उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
6: हाँ जी, समर कर रहा है आपका इंतजार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ लेजेंड्स ओनली ऑन रेडियो मैसेज 24/7 लाइव। आज हमारे साथ जो शख्सियत है जिनकी कहानी मैं आप तक लेकर आया हूँ, जिनका मैंने जिक्र किया आते ही, जिन्होंने कितने ही घरों को सजाया, उनके अरमान पूरे किए, उन्हें यादों की एक तिजोरी दी जिसमें कितनी भी यादें हों सेफ रहती हैं, सुरक्षित होती हैं। न तो आंधी तूफान वॉल्केनो अर्थक्वेक उनको तोड़ फोड़ सकता है, न ही गला सड़ा सकता है। और वो है गोदरेज कंपनी के फाउंडर अर्धशीर गोदरेज। अर्धशीर का मीनिंग होता है अर्धा, अर्धा मतलब स्ट्रॉन्ग, और शीर तो शेर है यानी लाइन, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, उतना ही स्ट्रॉन्ग जितना कि कोई ताला, कोई भी क्यों, सिर्फ गोदरेज ताला, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत। बाहर से जितने भी ताले मंगाए जाते थे उनमें स्प्रिंग हुआ करती थी और वो आसानी से खराब हो जाते थे, मगर गोदरेज में ये फीचर नहीं हुआ करता था, और यही वजह थी कि वो सबकी पसंद बनते चले गए। उनके फैन में कौन कौन थे ये तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, मगर कहानी की शुरुआत करते हैं। अर्धशीर बुरजोर जी सोराब जी गोदरेज की कहानी आप सुनेंगे अब समर की जुबानी। बहुत लंबा नाम है और इतनी ही लंबी है इनकी कहानी भी, बहुत बड़ी है ये कहानी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा 1951-52 में, जहां इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शन होने थे और जरूरत थी बैलेट बॉक्सेस की। अब ये काम किसे सौंपा जाए ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि सेफ्टी और मजबूती सबसे बड़ा पॉइंट था। तब गोदरेज एंड बॉयज को ये काम सौंपा गया, क्योंकि उससे पहले तक कंपनी के ताले बहुत ही फेमस हो चुके थे। बॉम्बे के विक्रोली प्लांट में काम करना शुरू कर दिया गया, और ये डिमांड पूरी करने के लिए हर रोज 15,000 बॉक्सेस बनाने थे, क्योंकि उस वक्त 23 स्टेट्स थे इंडिया में और उनमें कम से कम 12,00,000 बॉक्सेस की जरूरत थी। हर बॉक्स की कीमत थी 5 रुपए। लेकिन सबसे ऊपर था सिक्योरिटी का मुद्दा, वो कैसे एक नई तकनीक से पूरा किया गया।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छुकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
0: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक, नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की इस महफिल में। महफिल इसलिए कि देखिए यहाँ पर एक कहानी है और कहानी के साथ बहुत उम्दा गाने भी हैं। और आज के इस लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में हमारे साथ हैं आर्देशिर बुरजोर जी, सौराब जी गोदरेज, जिनकी कहानी मैं अब तक लेकर आया हूं। लेकिन इनकी कहानी से पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह इंडिया के पहले इलेक्शन में चुना गया बैलेट बॉक्स बनाने के लिए गोदरेज कंपनी को, एंड डिमांड एंड सप्लाई की रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी, वो भी सिक्योरिटी का इंतजाम देखकर। और फिर गोदरेज से ज्यादा विश्वसनीय कौन होता। वेल, कॉस्ट भी सिर्फ 5 रुपए थी। हालांकि उस वक्त 5 रुपए भी बहुत बड़ी कीमत होती थी, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल लॉक के साथ बैलेट बॉक्स लगाते तो वो भी एक्सपेंसिव पड़ता। उस वक्त गोदरेज कंपनी में एक वर्कमैन थे नाथलाल पंचाल। उन्होंने एक अनूठा लॉक सिस्टम बनाया जिसमें इस तरह का कोड डाल दिया, अगर कोई व्यक्ति उस कोड को तोड़ दे तभी ये पॉसिबल था कि वो लॉक ओपन हो। कुछ ऐसी तकनीक थी, कोड से लीवर का सेटिंग बदल जाता था और वो खुल जाता था। बाप रे, टेक्नोलॉजी। और उस वक्त ही टेक्नोलॉजी की बात करना सिर्फ एक ही कंपनी के बूते में था जो बहुत पहले से ताले बना रही थी। इनकी पूरी कहानी हम जानेंगे, पर कहानी की शुरुआत में हमें चलना होगा वहां जहां आर्देशिर का जन्म हुआ। ये साल था 1868 का। मध्य प्रदेश के सागर में ये लोग पारसी प्रीस्ट फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन इनके दादाजी सौराब जी और फादर बुरजो जी रियल एस्टेट के बिजनेस में आ गए। आर्देशिर में बहुत सी क्वालिटीज थी जो उन्हें अपने फादर से मिली थी। वो बिजनेस करना चाहते थे, पर उनके फादर चाहते थे कि वो लॉ की पढ़ाई करें, लिहाजा वो लॉ करने लगे। और लॉ करते ही उनको मिला ईस्ट अफ्रीका के जंजीबार में काम करने का मौका, और वो वहां चले गए। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें वहां से लौटकर आना हुआ, और आकर उन्होंने अपने फादर को असिस्ट करना शुरू कर दिया। ये सब और इससे ज्यादा आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। फिलहाल ये बेहतरीन नगमे आप सुनिए।

0: what you're like. Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zaxxalon India Aadi special discount sale. Rent two tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zaxxalon India Aadi special discount sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. And entry free. Shop, win, travel only at Zaxxalon India Aadi special discount sale.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी
2: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
3: GG Mart, your personal grocer.

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाँ जी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं समर हूँ आपके साथ और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर सीरीज में। आज हमारे साथ हैं फाउंडर ऑफ गोदरेज कंपनी आर्देशीर गोदरेज। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले इनका सरनेम हुआ करता था गुथारे जी, लेकिन इनके फादर ने इसे आसान बनाते हुए इसे बना दिया गोदरेज। और एक और बात जो शायद आप जानना चाहेंगे कि गोदरेज का लोगो तो आप लोगों ने देखा होगा, वो दरअसल आर्देशीर गोदरेज के

जब वो काफी छोटे थे तो उनकी शादी तय कर दी गई थी और उनकी शादी हुई बच्चूबाई से। बच्चूबाई खुद बहुत छोटी थी, मात्र 18 साल की थी। ये 1890 की बात है। इसके ठीक एक साल बाद बच्चूबाई और अर्देशीर गोदरेज की कजिन सिस्टर फिरोजबाई ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। क्या था ये प्लान और कितना सक्सेसफुल रहा ये प्लान, हम सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। कहानी में मजा आ रहा हो तो हमारे फेसबुक

0: They were not chosen.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
2: Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharwari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
4: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. What? Brought to you by Home Screen Entertainment.
5: राज की बात बताऊं? मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं.
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं. द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behan aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
7: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं. सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर.
8: हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल. आप हैं मेरे यानी समर के साथ और सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर्स सीरीज, और आज हम हार्देशीर गोदरेज साहब की कहानी आप तक लेकर आए हैं, जिसे आप सुन रहे हैं आपको समर की जुबानी. हम कहानी में उस जगह थे जहां हार्देशीर गोदरेज की पत्नी बच्चू बाई जी और उनकी बहन फिरोज बाई जी ने घूमने का प्लान बनाया. ये लोग साउथ बॉम्बे के राजा भाई क्लॉक टावर पर पहुंचे और सोचा कि और ऊपर जाते हैं, क्लॉक टावर पर चढ़ते हैं. दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंची और अचानक से वहां से छलांग लगा दी और दोनों की वहीं डेथ हो गई. ये बात उस वक्त भी मीडिया में बहुत छाई रही कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 200 फीट की ऊंचाई से वो कूद पड़ी. बाद में पता चला कि वो जब लोग ऊपर चढ़ रही थी तब किसी आदमी ने उनसे इतनी खराब बात कही कि वो सहन नहीं कर पाई और वो कूद गई. यानी कोई उनको छेड़ रहा था और उन्होंने खुद की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी. लेकिन ये शादी के अगले ही दिन की बात थी और इसका बहुत गहरा असर पड़ा हार्देशीर गोदरेज जी पर. इसके 2-3 साल बाद यानी 1894 में वो जंजीबार गए. उनका मन वहां बिल्कुल नहीं लगा, वो तन्हा और ज्यादा उदास रहने लगे. खैर, आपको खासकर फीमेल्स को ये सुनकर शायद ज्यादा अच्छा लगेगा कि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की इसके बाद.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आज आर्देशीर गोदरेज की कहानी मैं सुना रहा हूं और हम आपको बता चुके हैं कि कैसे उनके जिंदगी में उदासी आ गई थी और उन्होंने जिंदगी में अपनी पत्नी को खोने के बाद दोबारा शादी भी नहीं की, तो उनकी कोई संतान भी नहीं थी। इंडिया में एक ऐसी स्थिति आ गई थी उन दिनों की, कोई बिजनेस काम नहीं कर रहा था। ट्रेड पर ब्रिटिश मोनोपोली थी, शुगर केन से चीनी बनानी हो या फिर नमक, सब कुछ ब्रिटेन से आता था। कच्चा माल जाता था और फिर वहां से बनकर आता था और ये बहुत ही बुरी स्थिति थी इंडियन बिजनेसमैन के लिए, कलाकारों के लिए, सभी के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था ये। जमशेद जी टाटा ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कब्जा कर रखा था, बाकी लोग क्या करें ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इवन जो कागज भारत में यूज हो रहा था वो भी ब्रिटेन से आता था। स्मेल्टिंग इंडस्ट्री जो पहले थी वो भी बंद होने लगी क्योंकि फ्यूल महंगा हो गया था। अब सब उम्मीदें खत्म हो रही थी, लेकिन खत्म होती होप्स के बीच भी अगर कुछ बचा हुआ था तो वो था आइडिया, जो कहीं ना कहीं भारतीय बिजनेसमैन के दिमाग में जन्म ले ही रहा था। अब जो भी बिजनेस माइंड है वो तो करेगा ही कुछ ना कुछ। केमिस्ट के वहां काम करते करते उनको एक ऐसा ही आइडिया आया, मैं बात कर रहा हूं आर्देशीर गोदरेज साहब की। उनके दिमाग में जो एक बहुत ही यूनिक आइडिया था वो ये था कि हाई क्वालिटी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाएं, खासकर सर्जरी के ब्लेड और कैंची बनाने का आइडिया उनको आया। उस वक्त ये प्रोडक्ट ब्रिटिश कंपनियां बनाती थी और आर्देशीर ने इस मौके को लपक लिया। लेकिन पैसे कहां थे उनके पास बिजनेस शुरू करने के लिए, इतना पैसा था नहीं, क्या करते। उन्होंने किसी एक शख्स से मदद मांगी और वो कौन थे ये मैं एक ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। आप लौट कर जरूर आएगा, कहानी में मजा आ रहा है ना।

0: कोई कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो,
3: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
4: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
4: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: अरे अरे ए,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाँ जी, आप सुन रहे हैं मेरे यानी समर की जुबानी कहानी आर्देशीर गोदरेज साहब की। वेलकम बैक। आर्देशीर गोदरेज को आइडिया तो आ गया, मगर अब इस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करें? भाई उन्हें सर्जिकल ब्लेड बनाने हैं, कैंचियां बनानी हैं, लेकिन बनाएं कैसे, फैक्ट्री कैसे डालें, पैसा कैसे लाएं? तो उन्होंने अपने ही समाज के एक बहुत ही बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन मेरवान जी मुचेर जी कामा से मदद मांगी। उन्होंने उनकी हेल्प की और आर्देशीर ने उनसे 3,000 रुपए का लोन लिया, कर्ज लिया, और ऑपरेशन के औजार यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने लगे। मगर उनकी शर्त थी कि इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स पर मेड इन इंडिया लिखा रहता था। वो फिरोजशाह मेहता, गांधीजी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ उठते बैठते थे और स्वदेशी अभियान में शामिल थे। चाहते थे कि देश में बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स पर देश का नाम तो हो कम से कम। तो उन्होंने ये किया। खैर, अंग्रेजों ने उनके इस बिजनेस को चलने ही नहीं दिया। उस दौरान भारत में बहुत सारे बैंक्स बन रहे थे, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और भी कई बैंक्स। तो उन्हें यंग लोगों की तलाश थी जो जॉब कर सकें। मगर आर्देशीर के दिल में तो एक एंटरप्रेन्योर ने जन्म ले लिया था। कैसे वो नौकरी करते? वो दिन रात इसी सोच में डूबे रहते कि क्या करें, क्या बिजनेस करें, क्या आइडिया लगाएं। आखिरकार अखबार पढ़ते हुए, खबरें पढ़ते हुए, खासकर चोरी डकैती की खबरें पढ़ते हुए उन्हें ख्याल आया कि क्यों न ताला बनाने की फैक्ट्री डाली जाए। फिर वो कामाजी के पास पहुंच गए। इससे पहले उन्होंने लाइब्रेरी में जाकर पूरी रिसर्च कर ली थी कि लॉक कौन कौन बनाता है और कितना सक्सेसफुल है ये बिजनेस। वो आखिरकार अपनी रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि करेंगे तो यही करेंगे। और फिर क्या हुआ, एक ब्रेक के पर्दे के उस

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

भयंकर ताले, और इन तालों के साथ एक गारंटी लेटर दिया जाता था। उस पर लिखा रहता था कि हर ताले और चाबी का सेट अनूठा है, यूनिक है, और कोई दूसरी चाबी ये ताला नहीं खोल सकती। गोदरेज के इस भरोसे को भारत ने और भारत के लोगों ने हाथों हाथ लिया, और गोदरेज के ताले भरोसे का सिंबल बन गए। इसके बाद द्वारदेशीर साहब के दिमाग ने जोरों से काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद आई गोदरेज की अलमारी, कागज पर ढेरों डिजाइन बने, और तब जाकर फाइनल हुआ एक डिजाइन, एक स्टील शीट जो 16 बार बेंड करके यानी मोड़कर अलमारी बनाई गई। दरवाजे डबल प्लेटेड किए गए। अलमारी का वजन था 2.25 टन। गोदरेज ने इसके लिए 3 पेटेंट कराए, और इस तरह 1902 में पहली अलमारी बनकर बाजार में आई। यू वोंट बिलीव कि ये अलमारियां और सेफ इतने सेफ थे और मजबूत थे कि खुद ब्रिटेन की महारानी इनको सफर के दौरान यूज किया करती थी। कहते हैं कि 1944 में एक जहाज SS फोर्ट स्टिकलाइन, जो टनों सोना और जाने कितना कीमती सामान लेकर जा रहा था, एक्सप्लोड हो गया। उसमें आग लग गई और बॉम्बे डॉक्स में भी आग लग गई और 800 लोग मारे गए। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, आग को बुझाने में 3-4 दिन लगे, इतनी बड़ी आग थी। 5,00,000 टन मलबा निकला, लेकिन लेकिन लेकिन इस मलबे में कुछ था जो तहस नहस की बात छोड़िए, बल्कि यूं कहूंगा कि उसका बाल भी बांका ना हुआ। वो क्या था ये मैं आपको बताऊंगा, आप सस्पेंस में रहिए। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, जरा आप भी कॉफी पीकर आइए। मैं भी इंतजार कर रहा था अपनी कॉफी का, वो मुझे दिख रही है।

0: Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zaxxalon India Aadi Special Discount Sale. Rent two tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zaxxalon India Aadi Special Discount Sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. And entry free. Free. Shop, win, travel. Only at Zaxxalon India Aadi Special Discount Sale.
1: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस का
2: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा.
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है. टाइम टू रेज द बार. रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: Radio must be 24/7 live par. Samar ke saath, aap sun rahe hain Legends Achievers.
4: जी जनाब, लेजेंड्स की सीरीज में, अचीवर सीरीज में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं. मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर. हाँ जी, तो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि 1944 की एक ट्रेजेडी के बाद क्या हुआ. देखिए, वहां पर एक शिप था, उसमें आग लग गई और न सिर्फ शिप में बल्कि बॉम्बे डॉक का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल गया. 800 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए. वहां मौजूद सब कुछ खाक हो गया, लेकिन डॉक पर मौजूद ऑफिसर्स के सेफ, डॉक्यूमेंट्स रखने की अलमारियां बिल्कुल वैसी की वैसी थी. उनका कुछ भी नहीं हुआ, बाकी सब जल गया था, क्योंकि ये सब सेफ बने हुए थे गोदरेज के. हाँ जी, इवन किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी भी 1911 में जब भारत आए थे तो उन्होंने गोदरेज सेफ को अपने कीमती सामानों के लिए यूज किया था. मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था. वेल, इसके बाद तो अर्धेशीर गोदरेज बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के कॉन्टेक्ट में आ गए और उन्होंने स्वदेशी सामान बनाने की शपथ ले ली. उन दिनों विदेशों से आया जानवरों की चर्बी वाला साबुन ही चला करता था देश में और जिसे भारतीय लोग पसंद नहीं करते थे. तब उन्होंने वो साबुन बनाना शुरू किया जो वेजिटेबल ऑयल से बनता था. यही साबुन आगे चलकर बना सिंथॉल. लगाना कुछ जाना पहचाना नाम. जी, तभी तो मैंने कहा था कि गोदरेज बोले तो नॉस्टैल्जिया, यानी कि ढेर सारी यादें. बॉम्बे के विक्रोली में एक छोटा सा गैराज जहां से अपना काम शुरू किया 7 मई 1897 को, लेकिन आज ये एक साम्राज्य बन चुका है, एक बिजनेस एम्पायर. और इसका इतना बड़ा विस्तार है कि क्या बताएं आपको. आपकी यादों में गोदरेज कहां कहां है मैं बताता हूं. इंडिया का पहला फ्रिज गोदरेज, इंडिया का पहला टाइपराइटर गोदरेज, जिससे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू टाइप किया करते थे. और यहीं से लोगों में एक मैसेज गया कि जब प्रधानमंत्री गोदरेज से टाइप करते हैं तो फिर क्यों देश की जनता रेमिंगटन या किसी दूसरे टाइपराइटर को यूज करे. वेल, भारत की पहली फैक्स मशीन भी गोदरेज ने ही बनाई थी. हालांकि अर्धेशीर गोदरेज साल 1936 में ही, यानी 1936 में ही गुजर गए थे और उनके 14 साल छोटे भाई

छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना। है कट यमला पगला दीवाना।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
3: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
4: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए
0: non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
5: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गोदरेज कंपनी जब आर्देशीर गोदरेज ने बनाई तो उसका नाम रखा था गोदरेज एंड बॉयस कंपनी। इसमें बॉयस क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, यही रेडियो मस्ती पर। मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर्स सीरीज। मैंने आपको बताया था कि जब अर्धशीर गोदरेज कंपनी बनाने वाले थे तब उन्होंने पैसे मांगे कामाजी से। इन्हीं कामाजी को जब वो बाद में पैसे लौटाने गए तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि तुम मेरे भतीजे को अपने साथ काम में लगा लो, और उसका नाम था बॉयस। इस तरह से ये बॉयस पार्टनर बन गए, लेकिन वक्त के साथ वो भी ड्रॉप ऑफ हो गए, हट गए। अर्धशीर गोदरेज साहब ने ही इस गोदरेज को खड़ा किया, आइडिया लाते रहे, अंग्रेजों का विरोध भी खूब किया, अंग्रेजों ने भी इनका विरोध खूब किया, लेकिन ये भी अड़े रहे। अपने देश के लिए स्वदेशी अभियान में भाग लिया इन्होंने अपने तरीके से। इन्होंने अपनी मौत से पहले ही 1928 में अपने बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया था और बहुत सारा पैसा तिलक स्वराज अकाउंट में डाल दिया। लेकिन फिर इनके भाई ने आकर बिजनेस संभाला। चूंकि अर्धशीर जी के कोई बच्चा नहीं था तो फिरोज शाह की ही ये संतानें अब बिजनेस संभालती हैं। फिरोज शाह के चार बेटे हुए, सोहराब, दोसा, बुरजोर और नवल। सोहराब जी की कोई औलाद नहीं हुई। दोसा जी का एक बेटा था रिशद, पर रिशद की भी कोई संतान नहीं, और आज गोदरेज परिवार में बुरजोर और नवल की ही संतानें हैं। बुरजोर के दो बेटे हुए, आदि और नादिर। नवल की दो संतानें हैं, जमशेद और स्मिता। आदि गोदरेज इस वक्त गोदरेज समूह के अध्यक्ष हैं। जमशेद उस पेरेंट कंपनी गोदरेज एंड बॉयज कंपनी के चेयरमैन हैं, जिसकी शुरुआत अर्धशीर गोदरेज और फिरोज शाह ने की थी। सच कहें तो अर्धशीर गोदरेज ने अफोर्डेबल बनाया हर आदमी के लिए घर के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को, और हर घर को बसाने में भारतीयों की मदद की। इसके लिए हम उनके दिल से शुक्रगुजार हैं। चलिए फिलहाल इजाजत दीजिए, क्योंकि आपसे मुलाकात करूंगा एक और कहानी के साथ, एक और अचीवर को लेकर आऊंगा आप तक। आपको ये शो कैसा लग रहा है, हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है, हमें जरूर लिखकर बताइएगा। अरे फेसबुक पेज पर, बहुत ही सिंपल है, आप तो आते रहते हैं रोज ही, तो वहां आकर बता तो दीजिए कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। मैं हूं समर, आपसे मिलूंगा फिर यहीं पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएगा, और कुछ ऐसा कर जाएगा कि लोग आपको याद करें।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे। Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
5: Monday blues? Not on our watch. Wake up to world news, fresh updates, aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
6: Only on Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
7: Check it out. Josh
8: mein raho. Mere Karan Arjun aayenge.
0: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।

वेलकम टू योर चिल जोन, मस्ती म्यूजिक कैफे, ओनली म्यूजिक, ओनली मस्ती।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
4: जोश में रहो। 3, 2, 1
1: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
5: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
2: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: Don't stop the music, Rebo, sing it!
6: नाचने का मन है मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।

0: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: They are fresh. They are ho ho ho.

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: तर बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात और सी।
1: तर 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ मुग्धा और आप सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट। हेलो वेलकम बैक। आज क्या है, शुक्र है कि आज शुक्रवार है, इट्स फ्राइडे। और पता है क्या, फ्राइडे का मतलब सिर्फ फ्राई होकर के हफ्ते का अंत करना नहीं होता है, फ्राइडे का मतलब होता है मूड का रीसेट बटन। एंड दैट्स व्हाई मस्ती हैंगआउट आज से, इनफैक्ट पिछले फ्राइडे से ही थोड़ा सा नए फील में आ रहा है, राइट? शो में वही आवाज है ना, लेकिन एनर्जी अब ज्यादा खुली हुई है, ज्यादा फिल्मी है और ज्यादा फ्राइडे फ्रेंडली होने वाली है कि नहीं? सो बेसिकली बात यह है कि शो वही है, नाम वही है, लेकिन आज का मूड जो है थोड़ा नए पैकिंग में आ रहा है, थोड़ा ज्यादा फन, थोड़ा ज्यादा फिल्मी और थोड़ा सा वही वाला एटीट्यूड। हाँ भाई, अब बस एंजॉय करना है, ये वाला एटीट्यूड। तो आज ना, अब फिलहाल आज के शो में कोई सीरियस फेस यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, पूरे वीक। हाँ जी, श्योर जी, नोटेड जी, हो जाएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये चल रहा था ना, उसको थोड़ी देर के लिए खिड़की से बाहर फेंक दो या पॉज बटन दबा दो, बिकॉज मस्ती हैंगआउट का फ्राइडे एडिशन इज वेरी सिंपल प्रॉमिस के साथ आता है। इनफैक्ट आया है कि मूड हल्का रखेंगे, बातें फुल ऑन फन वाली करेंगे और म्यूजिक को फुल परमिशन देंगे कि वो इवनिंग का सीन बना दे। इसी फील के लिए फिलहाल मुझे लगता है फ्राइडे इवनिंग को इस गाने से बेहतर कुछ नहीं बना सकता। एंड व्हेन आई पिक द सॉन्ग, मुझे लगता है लाइफ को इस गाने से बेहतर कुछ नहीं बना सकता।
2: मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलग।
1: हाँ, बताएंगे शो में आगे बढ़ते बढ़ते, पर फिलहाल वो गाना कौन सा है, आइए आपको उससे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। Here's the song, Singapore, welcome to the new Friday mood, Mugdha ke saath, Tirkit Dha, yaad hai na?

0: They were not chosen. They were created.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
3: Alpha program uska junoon hai, aur jo bhi uske raaste mein aata hai, wo use maar deta hai.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
4: थकन चारों ओर है, चलते जाओ. पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं. नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है. लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. जोश में रहो,

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hey everybody, welcome back. मुग्धा को आप सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट पर। In fact, मैं तो इसको मस्ती हैंगआउट 2.0 कहती हूँ। Yes, और अभी जो गाना मैंने सेलेक्ट किया, जो मैंने आपके लिए प्ले किया, that was मटर गश्ती। मटर गश्ती का ना वाइब बिल्कुल क्लियर है। परफेक्ट प्लान जो मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इस गाने के हिसाब से। परफेक्ट मूड उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। परफेक्ट प्लान जैसी कोई चीज नहीं होती है। और बॉलीवुड जो है ना, इस वीक कुछ ऐसा ही ग्रैंड प्लान कर रहा है। अब आप कहेंगे, तुमने बोला परफेक्ट प्लान जैसा कुछ नहीं होता है। मूड परफेक्ट हो तो प्लान परफेक्ट हो जाता है, और ये ऐसी चीज है जिसको देखने और सुनने के बाद आपका मूड परफेक्ट हो जाएगा तो प्लान्स अपने आप ऑन द प्लेस बैठ जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जो है ना, उनकी जो फिल्म आ रही है रामायण, उसका ट्रेलर 18 जुलाई को न्यू दिल्ली में एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट में लॉन्च होने की तैयारी हो रही है। रणबीर जो है वो राम के रोल में है, साई पल्लवी सीता के रोल में, और यश जो है वो रावण के रूप में नजर आ रहे हैं। पर फिलहाल तो मुझे यश हर जगह एक टॉक्सिक तबाही मचाने वाले इंसान के रूप में नजर आ रहे हैं। कास्टिंग इसकी ऐसी है ना कि मूड सेट हो चुका है, तो जब मूड सेट हो तो प्लान अपने आप सेट हो जाता है। एंड दिस इज द मटर गश्ती का फिन कनेक्शन। कभी कभी इवेंट कितना भी प्लान्ड होना, एक्साइटमेंट तब तक बनी रहती है जब तक सब कुछ देख नहीं लो और मूड के साथ मैच नहीं हो जाए। अब देखना यह है कि सब कुछ इतना ग्रैंड मेगा स्केल पे हो रहा है, क्या यह आपके मूड को मैच करेगा टू मेक द परफेक्ट प्लान, या फिर यू नेवर नो। मैं वापस आऊंगी एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: आपको पता है मटर गश्ती का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे क्या लगता है, ये गाना कहीं ना कहीं हमको बताता है कि कभी भी नया शहर नहीं चाहिए होता हमेशा आपको। ये आपको ये बताता है कि कई बार सेम सिटी को नए मूड के साथ देखना भी एक नया एक्सप्लोरेशन होता है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉन्ग मटर गश्ती खुली सड़क पर, है कि नहीं? हैव यू एवर नोटिस कि हम सिंगापुर में रहते हैं लेकिन वीकेंड आता है और फिर भी ये बोलते हैं कि यार क्या करना है, अरे बहुत कुछ है करने को, एक्सप्लोर किया हो तब तो पता हो, इट्स फ्राइडे हो ऐसे भी। एंड आई हैव अ परफेक्ट प्लान फॉर यू। पूछे क्या जी? दिस इज द ग्रैंड 42nd एडिशन ऑफ जैक सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो। 16, 17, 18, 9 जुलाई है, हॉल 5 है सिंगापुर। एक्सपो सुबह 10 से लेकर के रात के 10 बजे तक। इट्स आदि स्पेशल डिस्काउंट सेल, आपको पता है एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड व्हाट नॉट इज हियर, आप ये बोलिए, मैं आपको बताऊं क्या नहीं है, आप जो पूछिए यहाँ पर वो है। सबसे पहली बात तो क्या आपकी जो फेवरेट एंट्री फ्री होती है ना वो यहाँ पर है। उसके अलावा फैशन, फूड, ज्वेलरी, ऑक्शंस, कल्चरल प्रोग्राम्स, कॉम्पिटिशन, लाइफ स्टाइल, लाइव परफॉर्मेंसेज एंड मैनी मोर थिंग्स। आपको पता है आप साथ में 2 टिकट्स भी जीत सकते हैं डेली टू अ ड्रीम डेस्टिनेशन, और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, पर वो सब के लिए फ्री है। Free registration for everybody. ड्रीम डेस्टिनेशन आपकी, वो तो आपको जीतने के बाद पता लगेगा, है ना? तो अपने ही शहर को क्यों ना एक नए नजरिए से एक्सप्लोर किया जाए इस बार विद द 42nd एडिशन, द ग्रैंड 42nd एडिशन ऑफ जैक सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो। चलिए इस बार का प्लान तो सेट कर दिया मैंने, है ना? Yeah.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
5: जीजी
4: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
5: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hey, welcome back Singapore. आप सुन रहे हैं मुग्धा को and this is मस्ती हैंग आउट। और आज का फ्राइडे मूड इज एब्सोल्युटली फन। हम बात कर रहे हैं मटर गश्ती हमारी लाइफ में कैसे कैसे अलग अलग रोल्स प्ले करती है। यू नो व्हाट, मुझे लगता है मटर गश्ती का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत स्पेशल जो है वो मूड है। बस इतना सा है कि रिस्पॉन्सिबल रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लाइफ बोरिंग हो जाए, है ना। देखो, रिस्पॉन्सिबल रहना बहुत जरूरी है, इरिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो सकते, पर इतना मत कि मतलब ओ बोरे यार ऐसे बोलना पड़े किसी को। वेल, अगर मैं देखूं तो बॉलीवुड के लेजेंड्स की कहानियां कहीं ना कहीं इस गाने के साथ बहुत मिलती जुलती हैं। आपको पता है जावेद अख्तर साहब, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एक फिल्म आई थी दी आइकॉनिक साथ साथ, उसकी द सुपर आइकॉनिक गजल तुमको देखा तो ये ख्याल आया जी, उस रात लिखी थी जब वो दोस्तों के साथ एक पार्टी में थे। एंड रिपोर्टेडली, पहले बता दूं कि अल्कोहल का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है, बिकॉज आई कैन नॉट शो आई कैन रीड। नो पेग लगाने के बाद घर पहुंचे, और मजेदार बात पता है क्या है, मजेदार बात यह है कि मैंने इसीलिए बोला था ये स्टैट्यूटरी वार्निंग। अब आइए मजेदार बात, अगले दिन जब उन्होंने लिरिक्स देखे, उन्हें खुद यकीन नहीं हुआ कि इतने इरिस्पॉन्सिबल होके क्या ही लिख दिया। भाई साहब, इस गाने को सुनने के बाद दुनिया रिस्पॉन्सिबल हो गई है प्यार के प्रति। आफ्टर 44 इयर्स भी वो गजल हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत लव सॉन्ग्स और गजलों में गिनी जाती है। देखा, कभी कभी जो बॉलीवुड है ना, उसकी बेस्ट स्टोरीज स्क्रिप्ट से नहीं आती है, बैक स्टेज से आती है अक्सर। यस, तभी तो कहते हैं मंजिल से अच्छा सफर होता है। बट देन आप इंस्पिरेशन सिर्फ गजल से लीजिएगा। एज आई सेड, अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, समझ रहे, अल्कोहल सेहत के लिए हानिकारक है।
2: तेरे सुफने दे विच सोनिया सानू भी कदिया बन जा बन दे।
1: नौ पैग वाला पार्ट आप भूल जाइएगा, ठीक है। और इसी मटर गश्ती के बाद मैं लगा दूंगी शो के दूसरे आर में। टिल देन सुनते रहिए मुग्धा को, तेरे कितना।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हेलो, वेलकम बैक सिंगापुर। मुग्धा तिरकिट धा के साथ आप सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट। वेल, फर्स्ट आवर खत्म हो चुका है और हम आ चुके हैं शो के सेकंड आवर में। पता है, फर्स्ट आवर वाज फुल ऑन मर्डर गश्ती घुली सड़क पे, थोड़ा रैंडम, थोड़ा केयरफ्री, थोड़ा की ठीक है यार, जो होगा देख लिया जाएगा, है ना। लेकिन हर मस्ती के बाद एक कहानी होती है, हर मस्ती के पीछे भी कहानी होती है, हर मस्ती के साथ भी कहानी होती है। एंड शायद इसीलिए हमारा अगला स्टॉप यानी ये आर जो है, इट्स ऑल अबाउट तमाशा। पता है क्यों? क्योंकि तमाशा ना हमें याद दिलाती है कि हम सब के अंदर एक वर्जन होता है, एक दूसरा वर्जन, वो छुपा रहता है। ऑफिस में अलग, दोस्तों के साथ अलग, वीकेंड आते ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और इसी हिडन वर्जन से मुझे एक बात याद आई, हमारी अल्फा, यू नो अल्फा रिलीज हो चुकी है। एंड अल्फा का एक सीन है जहां पे जिसको देख करके ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक फ्रेंच क्लासिक फ्रेंच फिल्म जो है उसकी याद दिलाता है, उसे कॉपीड है या उसे इंस्पायर्ड है या उसको एक ट्रिब्यूट है, इंस्पिरेशन है या कोइंसिडेंस है। अब ये तो फिल्म देखने वाले जाकर ही बताएंगे या जो फिल्म देखकर आ चुके हैं वो बताएंगे। बस इसी से मुझे एक और बात याद आ गई, जो फिल्म देखकर आ गया टिकट संभाल के रखा है कि नहीं, बिकॉज आपका टिकट आप ही के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि हम उसको रीइंबर्स करेंगे। बट क्यों करेंगे? अगर आप हमें बताएंगे कि आपके लाइफ की अल्फा वुमन कौन है, वो वुमन जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, कोई एक महिला जिसने आपकी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट दे दिया, कोई एक महिला जिसकी कहानी ऐसी है जिसने आपको इंस्पायर किया, जस्ट लाइक तमाशा, क्योंकि हर एक चीज के पीछे कहानी होती है। अगर आप हमें उस अल्फा वुमन की कहानी भेजते हैं तो फर्स्ट टॉप 10 एंट्रीज जीत सकती हैं अ टिकट रीइंबर्समेंट। यस, तो टिकट संभाल के रखना और आपकी अल्फा एंट्री भी इतनी जोरदार हो कि बस मजा ही आ जाए। पर आप ये सब भेजेंगे कहां? 9151893 पर। आपकी लाइफ की अल्फा वुमन की कहानी हमें बताइए, फर्स्ट टॉप 10 एंट्रीज अगर वो टिकट संभाल के रखती हैं तो उनका टिकट हो जाएगा रीइंबर्स।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर, क्रिकेट धाम मुग्धा के साथ फ्राइडे फीवर में आप हैं। दिस इज मस्ती हैंग आउट, मेरे हिसाब से 2.0 वर्जन। तमाशा की बात हो रही है और तमाशा का एक डायलॉग है, एक ऑब्जर्वेशन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हम सब रोल प्ले करते हैं, है ना? ऑफिस में यस बॉस, फ्रेंड्स के साथ एकदम फुल में मशीन बन जाते हैं, घर पे एकदम साइलेंट मोड में आ जाते हैं। सेम इंसान अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड रहता है, हम सब रोल प्ले कर रहे हैं। अब जहां तक रोल प्ले की बात है तो हमारे बॉलीवुड से बेहतर रोल प्ले और कहीं होता है क्या? फिलहाल रोल प्ले की जो लिस्ट है उसमें सबसे आगे हमारे राजकुमार राव, वो एक नए रोल में नजर आने वाले हैं, दादा के रोल में। दादा यानी क्रिकेट के सौरव गांगुली दादा, जो क्रिकेट फैंस होंगे ऑब्वियसली वो जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। उसका पहला पोस्टर फाइनली बाहर आया है। राजकुमार राव ने गांगुली का ये आइकॉनिक, अगर याद हो क्रिकेट लवर्स को कैसे भूल सकते हैं, लॉर्ड्स का वो शर्ट वेविंग मोमेंट जो है उसको रिक्रिएट किया है। एंड द फिल्म विल रिलीज 2027 14 मई। सौरव गांगुली ने भी पोस्टर देखकर कहा कि यार बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर। एंड फ्रैंकली मैंने इसको देखा तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा सौरव गांगुली बॉलीवुड के सेक्शन में क्या कर रहा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि दैट वाज नॉट सौरव गांगुली, वो तो राजकुमार राव थे। देखा, एक्टर का काम ही होता है किसी और की लाइफ को अपना बना लेना, और हम भी रोज किसी ना किसी रोल में तो होते हैं। फ्राइडे की गुड न्यूज क्या है? वीकेंड के दो दिन जो है ना, वो प्रोफेशनल वर्जन जो है उसे आप लॉग आउट कर सकते हो। बी योरसेल्फ, आप जो हैं वो हैं।

0: वही रहिए. I'll be right back. Stay connected. जोश में रहो.
1: छत पक्षियां रंगा दी, धूप बरसाती, सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया. दोनों को ही चाहते.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: वेलकम बैक दिलकर धाम मुग्धा के साथ मस्ती हैंगआउट 2.0। मैंने खुद ही नाम दे दिया, अपने शोगों को नाम ही नहीं बदल रहा था, पर फ्राइडे के मूड के साथ मेरा ये नाम 2.0 ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। अब हम आते हैं तमाशा पे। ये तो तमाशा का सबसे बड़ा रिलेटेबल मूड मेरे साथ क्या है, हर किसी का एक सपना होता है। कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई ट्रैवल करना चाहता है, कोई रिजाइन करके कैफे खोलना चाहता है, और कुछ लोगों का सीक्रेट ड्रीम होता है बस इतना, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और मैं अच्छा अच्छा खाता रहूं और चिल करता रहूं। सबसे बेस्ट सपना यही होता है, चाहे कोई कितना भी ना कर ले, दिस इज द बेस्ट ड्रीम। और आपका ये हिडन ड्रीम जो है उसको पूरा करने के लिए dreammartonline.com है ना। यस, अगर आपका हिडन ड्रीम ऐसा ही है प्रीमियम मंचिंग, तो जीजी मार्ट पे एवरी रिंग इज अवेलेबल, बिकॉज यहाँ पे है क्रिशिवल नट्स का एक पूरा रेंज, क्रंची कैश्यूज, रोस्टेड सॉल्टेड आलमंड्स, लिप स्मैकिंग पिस्टैचियोज एंड व्हाट नॉट। भाई कमाल है, आपको पता है क्रिशिवल के ड्राई फ्रूट्स जो है वो बिल्कुल फार्म फ्रेश होते हैं, 100% ऑर्गेनिक होते हैं, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं होते हैं। तो जो पैकिंग होती है वो भी एकदम इको फ्रेंडली होती है। और स्वीट साइड, जीजी मार्ट पर गुलकंद है द स्वीट साइड। ट्रेडिशनल रोज पेटल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स प्रिजर्व करके बनाया गया, नॉट प्रिजर्वेटिव्स, इसको प्रिजर्व करके बनाया गया जी। और कूलिंग का बहुत अच्छा ये साधन है, तरीका है, ये बहुत ही एरोमेटिक होता है, बहुत डाइजेशन फ्रेंडली बहुत होता है ये, एंड समर मोड के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है। सो तमाशा का ड्रीम यहाँ पर भी बहुत सिंपल है, लाइफ में रोल प्ले करो, ड्रीम्स याद रखो, अपनी चीजों को याद रखो, और बीच बीच में स्नैक ब्रेक को जो है उसको प्रीमियम रखो।
2: मैं परवाना तेरा नाम बताना, तू प्यार में जलना जलाना जलाना, यूं नजर उठाना।
1: कृषि वर्णन और गुलगन अवेलेबल ऑन जेजीबा, समझे।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी
2: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
3: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
5: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
6: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
8: Good morning.
9: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
10: Hey everybody, have you ever noticed हम सब के अंदर हम सब का एक सीक्रेट वर्जन छुपा होता है। ऑफिस में कभी किसी को नहीं दिखता, मंडे को वो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बन जाता है एंड फ्राइडे रात को वो ट्रैवल प्लानिंग कर रहा होता है, मतलब एक ट्रैवल प्लानर बन जाता है ना। फैमिली फंक्शन में वो बहुत ही शरीफ अच्छा बच्चा बन जाता है, दोस्तों के साथ फुल पागल पगलू हो जाता है एंड दिस इज वाई तमाशा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म हर एक के लिए, क्योंकि हम सब के अंदर एक उवेद होता है जो सिर्फ कहीं कहीं बदलता और कहीं कहीं बिल्कुल नहीं बदलता, बस वो वर्जन जो है ना वैसा कुछ। अब बॉलीवुड को देखो आप, एकदम एक नई दुनिया है वहां पे आपको ले जाने की तैयारी कर रहा है बॉलीवुड। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की एक मूवी आ रही है जिसको माना जा रहा है कि इट्स वेरी फैंटेसी और थ्रिल से भरपूर है। इट्स वन, अब वो वान है या वन है इंग्लिश में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पोस्टर उसका आ चुका है, मोशन पोस्टर है, रिलीज हो चुका है, डेट हैज बीन लॉक्ड 25 सितंबर 2026, 25 सितंबर 2026 ये रिलीज होने वाली है। तो आफ्टर वॉचिंग द पोस्टर ऐसा लग रहा है कि इस बार बॉलीवुड रियलिटी से सीधा माइथोलॉजी और फैंटेसी जोन में जंप मारने वाला है। तो आप वेद हो या वन हो, स्टोरी तभी इंटरेस्टिंग बनती है जब अंदर वाला वर्जन बाहर आता है, बिकॉज दैट्स द ओरिजिनल वन। एंड वेद कहाँ ओरिजिनल था ये हम सब जानते हैं, इसीलिए हम सब की लाइफ तमाशा मूवी से ही इंस्पायर्ड है या हम सबकी लाइफ से तमाशा इंस्पायर्ड है, वाइस वर्सा होता है कि नहीं। दैट्स व्हाई मुझे लगता है हर गाना हर मूवी इज समवेयर एन एंकर हमारी लाइफ का। होस्ट करने वाला एंकर नहीं, एंकर जो हमारी लाइफ को होस्ट करता है, समझे?
11: They were not chosen. They were created.
12: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलाएंगे।
11: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
13: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
11: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
14: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है।
11: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July, island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक सिंगापुर। मस्ती हैंगआउट का दिस इज द फाइनल आर शुरू हो चुका है। द फर्स्ट आर वाज ऑल अबाउट मटर गश्ती, सेकंड में हमने लाइफ के तमाशों की बातें की, एंड नाउ जब हम कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं तो क्यों ना हम एक और कलर देखें। एंड दिस टाइम आई हैव पिक्ड अगेन फ्रॉम तमाशा, एंड इट इज हीर तो बड़ी साड़ी। ये गाना वन ऑफ माय फेवरेट्स है, यू नो इतना कमाल गाना है कि मैं क्या बताऊं। नाम सुन के लगता है फुल रोना धोना हीर तो बड़ी साड़ी है, बट द मोमेंट यू प्ले द गाना, ओह माय गॉड, सब मुश्किल है इस गाने में। पता है बॉलीवुड के गाने सिर्फ सुनने में ड्रामेटिक नहीं होते, उनके पीछे ना कहानियां होती हैं, जस्ट लाइक द मूवी तमाशा, जस्ट लाइक दिस सॉन्ग, जस्ट लाइक एवरीथिंग अबाउट दिस होल पिक्चर। 90s का एक बहुत ही एवरग्रीन गाना है, सबने सुना होगा, जिए तो जिए कैसे, आई विश मैं अच्छा गा पाती। सो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स इस गाने के मल्टीपल वर्जन रिकॉर्ड हुए थे, लड़ाइयां हो गई थी भाई साहब, कुमार सानू, पंकज उदास, SP बालसुब्रमण्यम साहब एंड अनुराधा पौडवाल, ऐसे सिंगर्स ने इसे अपनी आवाज दी। एक गाना चार आवाजें और हर वर्जन का अपना एक अलग ही फैन फॉलोइंग था। मतलब कि बॉलीवुड में ना इमोशंस हो या आप म्यूजिक की बात करो, एक वर्जन कभी काफी होता ही नहीं है। मैंने तो सुना है कि इस गाने के लिए बकायदा संग्राम हो गए थे, लड़ाइयां हो गई थी, कौन गाएगा कौन गाएगा कौन गाएगा, तो फाइनली चार वर्जन बना दिए गए। अब देखते हैं हीर की सैडनेस लाइफ को और कितना एंटरटेनिंग बनाती है। सुन रहे हैं आप मुग्धा को, आई विल बी राइट बैक, स्टे कनेक्टेड।

0: are you?
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
3: वाह वाह वाह वाह भाई वाह, ये गाना हिट तो बड़ी सैड है, सिर्फ बॉलीवुड से लाइफ को कनेक्ट नहीं करता है, सीधे हॉलीवुड पहुंच गया। यू नो व्हाट, नॉर्मल सैडनेस ना, जैसे गाना है हीर तो बड़ी सैड आई हाय, हीर तो आज बड़ी मैड ओए होए, है ना। आप सुन रहे मस्ती हैंगआउट पर मुग्धा को, लेकिन ये नॉर्मल सैडनेस नहीं है, ये वो सैडनेस है जो सीधा कहती है मैं सैड भी हूँ, मैड भी हूँ और ड्रामेटिक भी हूँ। मैं सिर्फ रो धो नहीं सकती, मैं पूरा ड्रामा भी करूंगी और मैं पागलपन भी दिखाऊंगी और मैं सैड पगलू हूँ। आया समझ में? ऑनेस्टली सिनेमा यही ड्रामा मांगता है, एंड दिस टाइम इट्स नॉट अबाउट बॉलीवुड, इट्स अबाउट हॉलीवुड। यू नो डून पार्ट 3 का ट्रेलर आउट हो गया है, जहाँ पे टिमोथी जो है वापस आ रहे हैं एज द एम्परर पॉल। स्टोरी में है बिट्रेयल, वॉर, पावर स्ट्रगल, हॉन्टिंग विजन्स, एंड भाई साहब बहुत ज्यादा खून पानी और पसीना। मतलब बेसिकली पॉल का दिमाग ना फुल प्रेशर कुकर मोड में है, और ड्यून 3 का ट्रेलर देख के मैं खुद प्रेशर कुकर मोड में आ गई थी। हीर कहती है, उसके गाने में एक लाइन है कि इश्क है मैचस्टिक, मैचस्टिक दिल है डीजल। ठीक है, ड्यून का ये ट्रेलर देख के लग रहा है पावर मैचस्टिक है माचिस, और एम्पायर डीजल है फूंक डालो। जब ये दोनों मिलते हैं ना तो क्या होता है, आग लगती है, एक्सप्लोजन होता है। फिल्म विल बी रिलीजिंग ऑन दिसंबर 18th, वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है आईमैक्स पे, और इंडिया में दोनों वर्जन में आएगी, इंडिया उधर सिंगापुर में भी आएगी, ऑफकोर्स आएगी, नहीं आएगी तो मैं लेकर के आ जाऊंगी रेत के नीचे से। तो देखो आप हीर हो या एम्परर पॉल, मूड जब वेरी सैड आई हाई और वेरी मैड होता है ना, कहानी ऑटोमेटिकली एपिक बन जाती है, सबसे माफी मांगते फिरते हो आप। पॉल ने भी मांग लिया इसमें जिंडाया से, अब भैया ये माफी नहीं मांगेंगे तो कहाँ जाएंगे, घर में जिंडाया घुसने लगी ना इनको। हीर तो कितनी भी सैड हो घर ही जाएगी, पर यहाँ हीर सैड नहीं है।
4: व्हाट झुमका, व्हाट झुमका, व्हाट झुमका,
3: हीर का हीरो सैड है। कहानी में ट्विस्ट। I'll be right back. Stay connected.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hey everybody, final stretch, यानी कि बस आने वाली final stretch में आप सभी का welcome back है। आप सुन रहे हैं मुग्धा को, this is मस्ती हैंग आउट मुग्धा के साथ। ये जो फ्राइडे है, that has been fun, है ना। आज का शो काफी रोलर कोस्टर रहा। मटर गश्ती में हमने काफी सारी बातें करी। तमाशा ने कहा कि जो वर्जन दुनिया को दिखाते हो ना, उसके पीछे एक और वर्जन हमेशा होता है। एंड हीर जो है हमारी इतनी सैड थी, उसने हमको याद दिलाया कि फीलिंग्स हो तो उन्हें बोरिंग मत बनाओ, बॉलीवुड स्टाइल में एक्सप्रेस करो। कैसे? माइक के इधर आ जाओ ना। एंड दिस इज द मौका वी आर गिविंग आपको। कैसे? यही बताने के लिए मैं आई हूँ। यू नो व्हाट, आज का पूरा मूड ये था ना कि वाइब को साइड में मत रखो, उसको एक रोल पर लगाओ, काम पर लगाओ। अगर आपकी आवाज में वाइब है, आपकी वॉइस में लोग अगर सुन के कहते हैं यार तुम्हारी आवाज रेडियो पर जाने लायक है, माइक के उस तरफ जाने लायक है, तो क्यों बैठे हो? मस्ती मीडिया नेटवर्क आरजे एकेडमी के एडमिशंस ओपन है। 12 आवर की हाइब्रिड ट्रेनिंग है, ऑनलाइन प्लस स्टूडियो का एक्सपीरियंस होगा, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का कोर्स है, फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल फोकस सिलेबस है, और ये सब कुछ ओपन है फॉर द पीपल हु आर 14 इयर्स एंड अबव, है ना। सिलेक्टेड ट्रेनीज को सीधा इधर शो होस्ट करने का मौका मिलेगा लाइव, तब पता लगेगा हियर साइड है मैडम माइक के इधर कैसी है। एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए आपको क्या करना है, दैट्स द ट्रिकी पार्ट, अपना एक इंट्रो लिख करके मेल करना है info@radiomasi.com.sg पर। बस अपनी आवाज को ना बैकग्राउंड में मत रखो, उसको आपका मेन ट्रैक बनाओ, बैकग्राउंड हम देख लेंगे। दिस इज मी मुग्धा, वापस आती हूँ ब्रेक के बाद, स्टे कनेक्टेड।

0: तो।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
3: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
5: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत
6: ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
7: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
8: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो।
9: किनिया किनिया गल्ला वे तू करदा है, करदा है। इनिया मिनिया गल्ला ते तू लड़

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: एंड विद दिस बस मस्ती हैंगआउट का आज का फ्राइडे एडिशन यहीं पर समाप्त होता है। जी हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी की पेटियां सीट बेल्ट अगर आप चाहें तो खोल सकते हैं। विमान अपने गंतव्य तक पहुंच चुका है, कृपया धीरे धीरे एक एक करके बिल्कुल मत उतरें, धक्का दे के उतरे एक दूसरे को, यही तो हमें चाहिए लाइफ में। बहुत सी बातें करी, मटर गश्ती, तमाशा, हीर की सैडनेस, मैडनेस, एवरीथिंग, थोड़ा कॉमेडी, म्यूजिक, सार्कैज़म, सब था मेरे शो में। पता है इसी फिल्मी मूड के साथ जो वीकेंड है ना वो मैंने सेट कर दिया है। नई मेमोरीज बनाइए, अपने लोगों के साथ वक्त बिताइए, प्लान प्लेलिस्ट सब कुछ मस्त रखिए। काम की बात, अगर आपकी लाइफ आपको ड्रामा दे रही है तो उसको बॉलीवुड स्टाइल में हैंडल करो। कॉमेडी, म्यूजिक, सार्कैज़म सब डाल दो उसमें, मसाला पिक्चर बना दो ऐसा कि सब नाचें। फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ नाचने, मेरा भी तो फ्राइडे है अगर आपका है तो, है आधा तो बीत चुका है, जो बाकी है उसको हम फन पगलू बनाएंगे। फिलहाल दिस इज मी मुग्धा बाबाई, टेक केयर, मस्ती हैंगआउट पर आज इतना ही। मिलूंगे अगले शो में एक नए मूड, नए गाने और बॉलीवुड की बहुत सारी बातों के साथ। खुश रहिए, फिल्मी रहिए और हाँ मस्ती हैंगआउट की तरह मस्त रहिए।
2: लौट के आया उड़ता पंछी नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची आवाज।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील करा सील
1: टाइट टाइट वेरी टाइट।

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Yo!

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: रात अकेली है तो क्या, हम तो

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: रात अकेली है तो क्या हम तो आप

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो

कहां से कहां जाऊं, कहां मैं छुप जाऊं, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊं, हूं खुद से जुदा।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: बात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: राहुल मुझे वो आश्रम में वापस जाना है।
2: मगर पूजा वहाँ तो सिर्फ खंडर ही खंडर है।
1: नहीं, मैं वहाँ जाऊंगी।

0: का सॉल्व।
1: रात अकेली है,
2: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।

0: भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: मुंबई।

0: Gora be.
1: जागो जागो जागो, सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय, ठंडी हो गई।

0: जाग जा।
1: चल फोट भाग जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो भी तो सोया पड़ा है।
0: ए विलन बादशाह, ये क्या करता है?
1: अरे कसरत करता है, देखता नहीं क्या तू?
2: अरे इसे कैसे होता है, बेड में कसरत होता है, ये तो मैं

0: इससे पूजा तो करने दो मुझे, सारा दिन झगड़ा ही करे हुए क्या है।
1: अरे साला, अभी तक लड़े हुए तुम लोग।
2: अरे छोटू, अरे तेरी तो
1: अपन को हाथ नहीं लगाना।

0: ना खेला ना खेला
1: तोरी शब्द मैं मरिया की थोरी
0: हाय हाय हाय हाय चाचा देखे।

रहना, मुझे घर पे नहीं रहना, आज तेरे नाल मेरी सारी शाम गुजरनी, नहीं आज मुझे दुनिया की सुननी, मुझे तो है बस अपनी ही करनी। असली सुनना।

अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।

0: जो चौका उड़ते हुए जाए उसे छक्का कहते हैं।
1: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

0: चलो घर चलें।
1: चलो।
2: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

0: चतुर एक पैर है ना, या गोला बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर ना।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Jump.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

साड़ी पहनती हुंदी जे फिर ना क्यों दस्या नहीं ते मुड़ के जे कित मेरे वांगू फड़े गए ना ते फिर कहंदे फिरोगे सॉरी अंकल सॉरी मैं तो ट्यूशन बारे पुछण आया सी।

शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live Pen. Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 Live.

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, मस्ती 90s mixtape with आपकी 90s वाली अंतरा, Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.